0: आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।
1: Abolivne seno ona mahan logon mese he jen ke vegane ka karione samai ora stahan ke semaunko par kar leya he or vesha sanskarte gor vegan ka khazana ban gaya he chikitsa farmasty class darshan urania vegano ke vekas me unke mahan yogdan ko antarsha samudai dwara manati di gayi he ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने अबोलिब्ने सेनो को मानव सभ्यता के प्रमुख हस्तियों में से एक के रूप में नामित किया है और उनके विरासत के अध्ययन और प्रचार पर विशेष ध्यान देता है।